0: The untold story. An eye for detail. A different point of view. Find it here. Reporter, every weekend on DW.
1: मुझे अल्लाह पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है. इंशाल्लाह मेरा भाई वापस आएगा.
0: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
1: उन्हें बस ऐसा सोचा कि मेरे घर के हालात ठीक हो जाए. ऐसा सोचता है. तो मैं उन्हें क्या विषय मैं घर के हालात ठीक करने उन तक घर रह के भी हो सकते हैं. तो आप उठे रास्ते ना जा. तो नहीं सी मंदा किसी की गल.
0: Find out about Rubina's story. Info migrants. Reliable news for migrants, wherever they may be.